0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: It's day two of the BRICS summit. Now all eyes on the next set of bilaterals that are scheduled in the next 90 odd minutes. On day two of the summit, there's been a lot of focus on the BRICS plus extended family. And I want to get in our crack team of editors and reporters who've been at the forefront of NDTV's BRICS coverage. Senior Managing Editor Vishnu Som, and we have Aditya Raj Kaul as well as Rishabh Pratap as well. And they, of course, have been decoding and dissecting every bit of the BRICS summit. And in fact, it's the final day of the summit in India. Leaders for BRICS nations come together to share big diplomatic message. Prime Minister Modi made it clear that inclusive growth is the aim and all BRICS countries will blossom together for humanity. He further stated that global South nations are showing confidence in BRICS and together they all will rise through cooperation. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin stated that multilateral approach can ensure stability. Prime Minister Modi, along with other leaders, posed for the big BRICS family photograph as well. And they stood along with the Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping, flanking on the two sides of Prime Minister Modi. That you can see on your screens right now is the BRICS family photograph. Let's in fact play out exactly what the leaders said.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है. ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है. वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट

0: our position on border transgression and China's role in Operation Sindoor while allowing dangerous levels of economic dependence. The other question that Congress party has put out is that China's leader has arrived here for the BRICS summit, considering how China has occupied territories like Arunachal and Ladakh. The Prime Minister should speak bluntly and demand China's withdrawal. That would be the greatest benefit India would derive from this summit. In fact, that is the latest that we're getting as far as what the Congress has put out. And let's play that out. In fact, there's a Congress reaction also coming in. Let's play that out.
1: मुझे लगता है कि जो मीडिया में बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं. मुझे लगता है कि चाइना के चीफ यहाँ पर आए हैं ब्रिक्स में, और जिस तरह से चाइना ने अरुणाचल हो, लद्दाख हो, इस पे जिस तरह से कब्जा करके रखा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने दो टुक बोलकर वहाँ से चाइना को हटाना चाहिए. वही ये समिट का सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान को होगा. मुझे लगता है
2: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की. प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन. भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई. मोदी जी की अगुवाई में बहुत ही सौम्य भाव में निर्णय हुए. लेकिन कांग्रेस वाले जो कह रहे थे कि ब्रिक्स से क्या निकलने वाला है, अब वो पूछे हैं, उनसे जवाब लीजिए. क्या आर्थिक रिश्तों पर बात हुई, बायलैटरल्स मीटिंग हुई, चीन ने भारत के साथ दोस्ती का एक नया हाथ बढ़ाया, राष्ट्रपति पुतिन तो है ही हैं हमारे, क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने पीएम की तारीफ की, क्या ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने पीएम के बारे में बड़े अच्छे उद्गार प्रकट किए. तो कांग्रेस पार्टी जलेंगे, तभी अपना मन बड़ा करिए.
3: प्रधानमंत्री, सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भारत की बात, भारत की के प्रस्ताव और भारत के विषयों को जिस गंभीरता के साथ में लिया जाता है, मैं ये मानता हूँ कि भारत के बढ़ते हुए प्रभाव और प्रभुत्व दोनों का दर्शन वहाँ हो. भारत जिस तरह से FTA कर रहा है, हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ FTA हुआ है, हमारा अमेरिका के साथ में FTA की वार्ता चल रही है, ब्रिटेन के साथ में ऑलरेडी FTA हो गया है, और दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ. मैं मानता हूँ कि हमको पॉजिटिव नोट पर उस दिशा में आगे देखना चाहिए.
0: All right, let's get in Aishwarya Jain for more on this. Aishwarya, politics has already erupted with Congress party putting out that message and those questions that it is asking.
4: Well, that's right. And remember, just few days back, it was former Finance Minister P. Chidambaram who had also questioned the BRICS summit by asking that what happened while India participated in the G20, or India are the members of this squad, or how this will transform into the ground level with people getting benefits out of it. Again, yet another time it is the Congress leaders who have questioned that yes, the central government organizes such huge events, but the common man doesn't get benefit, to which the Bharatiya Janata Party has slammed the Congress party over India's participation and how India has been rolling out red carpet for the global leaders. In fact, BJP went on to say that the engagements that Indian Prime Minister has done with different global leaders and the kind of ties that emerged after that, the kind of agreements that have been done in the past, be it of the FTAs that we have signed with different countries or other mutual agreements, this will definitely give benefits to the common person, which Congress completely fails to understand.
0: Right, I'm going to leave it there, Aishwarya. Thanks much for filling us in. A story that I'm afraid will continue to have more details through the course of the day. But on that note, completely timed out on this edition of the news, slipping into a break. In fact, on your screens are those latest visuals that are coming in right now. Latest visuals that you see on your screens that are coming in as we speak, as far as the BRICS summit is concerned. That, of course, is the Egyptian president. You can see that. That's the first set of meetings that is taking place. Egypt is a very important country as far as India is concerned. And that you see is the Egyptian president, part of BRICS countries. Remember, BRICS itself

0: to scale across BRICS. One of the greatest strengths of BRICS is the diversity of experience across our countries. We do not need to reinvent every solution. We need to identify what works, adapt it where necessary, and take successful models to scale. The BRICS WBA has developed a series of knowledge reports with 10 key recommendations across healthcare, inclusive economy, agriculture, creative economy, innovative development, and tourism, which we hope can serve as pathways for action. Excellencies, for the Women's Business Alliance, the next phase is about scale. Scaling women-led enterprises, scaling access to capital, scaling innovation, scaling market opportunities, and most importantly, scaling successful solutions across our economies. The BRICS WBA will continue to build connections between policy and enterprise, ideas and investment, and women entrepreneurs and opportunities across our countries. For BRICS to realize its full economic potential, women must have the opportunity to build, own, and lead at scale. Women-led development must therefore not sit alongside the BRICS growth story. It must help define it. On behalf of the BRICS Women Business Alliance, I have the honor to submit the 2026 annual report to the BRICS leaders for their consideration.
1: All right, that of course was BRICS Women Business Alliance talking about it. Switching focus now and coming to the big story that we are tracking right now. Latest updates, you have a Congress party slamming the all-vegetarian menu at the gala dinner hosted by Prime Minister Modi yesterday at the BRICS summit for the heads of state that are visiting. And Rahul Gandhi, leader of opposition in Lok Sabha, has said that why is it that an all-vegetarian menu was served? He said that 80% of Indians now do eat non-vegetarian. Why is it that the menu didn't reflect that?
2: आभार व्यक्त करता हूं आपके महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों ने हमारे सहयोग को व्यापकता भी दी है और गहराई भी दी है आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रिलेवेंस ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा हमारे फ्रेमवर्क्स फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करें इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे साथियों ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है अब दुनिया हमसे केवल आइडियाज और कमिटमेंट्स नहीं कॉन्क्रीट रिजल्ट्स की अपेक्षा करता है मुझे विश्वास है कि हम साझा प्रयासों से इन अपेक्षाओं पर जरूर खरे उतरेंगे मैं ब्रिक्स के अगले होस्ट के तौर पर चीन को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं न्यू दिल्ली समिट को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी का और आप सबकी टीम्स का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं आप सभी की सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना करता हूं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद

Dare to go glam. देव भूमि उत्तराखंड, जहां महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और विश्वास जगा रही हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण

0: इसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर है सबसे बड़ा तो चाइना और हमारे बीच में, वो दूर होना चाहिए और निश्चित रूप से ब्रिक्स इससे मजबूत होगा।
1: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई, मोदी जी की अगुवाई में बहुत ही सौम्य भाव में निर्णय हुए। लेकिन कांग्रेस वाले जो कह रहे थे कि ब्रिक्स से क्या निकलने वाला है, अब वो पूछें उनसे जवाब लीजिए, क्या आर्थिक रिश्तों पर बात हुई, बायलैटरल्स मीटिंग हुई, चीन ने भारत के साथ दोस्ती का एक नया हाथ बढ़ाया, राष्ट्रपति पुतिन तो है ही हैं हमारे, क्या मलेशिया के प्रधानमंत्री उन्होंने पीएम की तारीफ की, क्या ईरान के राष्ट्रपति उन्होंने पीएम के बारे में बड़े अच्छे उद्गार प्रकट किए, तो कांग्रेस पार्टी जलेंगे, तभी अपना मन बड़ा करिए।
2: All right, on that note, slipping into a very short break, viewers, we come back on the other side, get you the other big international story that we are focusing on, the big controversy happening in Tamil Nadu over actor Vijay's visit to the UK. We get you all of that.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्थर मसाला।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
4: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
6: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
7: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये।
8: कुछ इससे भी अनोखा।
7: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद पान मसाला।
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever.
4: And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Show.
9: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be a thousand more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
10: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: Welcome to India's biggest grassroots innovation movement, Vande Bharatam. From ideas to impact, from dreams to nation building, let the journey begin. हमारे इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे आज के मेंटोर्स को. तो प्लीज वेलकम ब्यूटी और ग्रूमिंग इंडस्ट्रीज के किंग माने जाने वाले, विजन को बिजनेस में बदलने वाले रेने कॉस्मेटिक्स के फाउंडर आशुतोष बलानी. हाय आशुतोष.
1: हेलो, हाउ आर यू?
0: वेलकम टू वंदे मातरम.
1: थैंक यू सो मच.
0: 26 साल के बैंकिंग के तजुर्बे से इन्होंने सिखाया कि असली वैल्यूएशन हाइप में नहीं, हिसाब में होती है. प्लीज वेलकम कैक्टस पार्टनर्स के मास्टरमाइंड और स्टार्टअप इकोसिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टर, ऑल्सो नोन एज द एंटी पावर लॉ इन्वेस्टर, मिस्टर राजीव खालम्बी. हाय राजीव, वंदे भारतम के इस मंच पर आपका स्वागत.
1: थैंक यू.
0: प्लीज हैव अ सीट. एक वक्त था जब 10 लाख का लोन मिलना भी इनके लिए स्ट्रगल था, और आज इन्होंने नियरली 1700 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है. हमारे इनोवेटर्स के लिए इनसे बड़ी इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकती. शी इज वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज. प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट मेंटोर, उज्वा की को फाउंडर आरती गिल. हाय आरती, वेलकम टू वंदे भारत.
2: थैंक यू सो मच.
0: प्लीज हैव अ सीट. हर बिजनेस को एक फाउंडर मिल जाता है, लेकिन हर बिजनेस को उसे नए शिखर तक ले जाने वाला लीडर नहीं मिलता. 500 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स और लाखों सेलर्स के ग्रोथ पार्टनर, प्लीज वेलकम फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर कल्याण कृष्णमूर्ति. हाय कल्याण, सो गुड टू हैव यू ऑन वंदे भारतम.
3: इट्स अ प्लेजर राजू. थैंक यू.
0: प्लीज हैव अ सीट.
3: थैंक यू.
0: इन्होंने 22 साल की उम्र में एक मैनेजमेंट ट्रेनी से अपना सफर शुरू किया और आज इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी को लीड कर रहे. जैसे इन्होंने अपने पिताजी गौतम अदानी जी की विरासत और पोर्ट बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, ठीक वैसे ही आज इस नए मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी निभाने आए हैं द सेकेंड जनरेशन विजनरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी पोर्ट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मिस्टर करण अदानी. Hi Karan.
1: Hi.
0: Thank you for your time and thank you for coming to Vande Bharat. Please have. Welcome to Vande Bharatam. Karan, आपसे पूछना चाहूंगा कि एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे.
1: One advice I would give is के keep working hard, be grounded and never give up learning because every day there is something new to learn from everybody who you work with.
0: And that's got to be a motto of your family, na? Be grounded. And that's one thing that comes across loud and clear. Be grounded. And that's how you should be living, I think. You know, be grounded. I think that's one thing that they should learn. Unko ye samajh mein aana chahiye, kyunki yahan se jaane ke baad mein jab wo udaan bharenge, to ye advice bahut kaam aayegi ki please always be grounded. So welcome to Vande Bharatam. Shuru karte hain. Bulaye hamare jo innovators hain. To hamare jo pehle innovator hain, wo mere shares hain, Jaipur se hain. बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें बिजनेस करना आता है और मुझे एक्टिंग, लेकिन द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज ये इतना इंक्लूसिव है कि हम दोनों साथ में इस मंच पर खड़े होंगे. प्लीज वेलकम फ्रंटियर मार्केट की इनोवेटर अजयता शाह, जयपुर राजस्थान से. So nice to have you here.
4: Thank you so much for having me.
0: मेरी छाती ना ऐसे समय सीना जो है वो चौड़ा हो रखा है मेरा, क्योंकि आप जयपुर से हैं, आप मारवाड़ी हैं, और उससे ज्यादा इसलिए कि आप उन लोगों को सशक्त बना रही हैं जिन्हें बहुत पहले सशक्त हो जाना चाहिए था. आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमेन. यू नो, टू मेक अ वुमन स्पेशली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, फ्रॉम अ विलेज, टू मेक अ फील फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज आई हैव फिगर्ड दिस एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट सब कुछ करती हैं वो, बस उन्हें एक मलाल रहता है उनकी जिंदगी में कि उन्हें ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महसूस नहीं होता है. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. I think your pitch is ready. I'm very, very sure.
4: Yeah.
0: You look very confident.
4: I'm happy to be here.
0: So. Yes, and we're happy to have you here.
4: Yep.
0: और आपके चमकने का समय शुरू होता है अब.
4: So hello mentors, I am Ajayta Shah, founder of Frontier Markets. भारत इंडिया के tier 4, 5, 6 गांवों को villages अगर अपन देखें तो आज भी 80 करोड़ ऐसे जने हैं जिनके पास उनके जो products और services की जरूरत होती है वो पहुंचते नहीं उनके पास. और ऐसा नहीं है कि solutions नहीं है, innovators नहीं है. But to reach 7 lakh rural villages in India, you need infrastructure.

0: You need deep rural customer understanding, and most importantly, you need a trusted distribution network. So what is the solution? It's women. Why? Because mahila jo hai, unke paas bahut badi poonji hai bharosa ki, aur wo literally kundli nikal sakti hai sab log ki. So welcome her into our Frontier Markets platform. Frontier Markets has become the rural distribution infrastructure, layering an operating level with women and a scale level with technology. Using our AI-enabled Meri Saheli app, Sahelis become entrepreneurs, but they become digital dukans. And that was the vision, but she's also using technology to gather customer insights, do demand generation, build credit history, facilitate assisted commerce, and then do delivery and services. We've done about 800 crores worth of sales on products and services. We have about 210 plus partners on our platform that help us deliver the services to the last mile. And we are in 5,000 villages across 4 states of the country. Hum yahan par kyun hain? Hum chahte hain ki 10 lakh saheli hone chahiye. And we should be able to service every single rural family in last mile delivery. But also, we're looking for product partners and brands and innovation. So join us in getting involved. I'd love to understand ki aapke level pe hum kaise jud sakte hain aapke sath to scale this. Aaj 4 states mein hain. And har state mein government ka partnership hai, but wo government ke partnerships aur banane. Secondly, aaj hum log jo bhi products or services leke aa rahe wo kam hai. We need more in terms of procurement. And third, of course, strategic capital allows us to build our technical capabilities. So these are probably the 3 major asks from my side.
1: That's great work, Ajayda. First of all, let me congratulate you. बहुत कम लोग हैं जो इंडिया को नहीं भारत को कैटर करते हैं और ये उनमें से एक है तो सबसे पहले बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एम्पावरिंग वुमेन ऑफ इंडिया एंड डूइंग राइट बाय भारत
2: यू हेल्प द लेडीज सेट अप देयर ओन बिजनेस इज दैट व्हाट यू डू
0: हमारे एसईजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज 15 करोड़ महिलाएं दैट आर पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड मिशन उसमें से लगभग 25% आर नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स Which means कि कोई ना कोई दुकान या टेलरिंग का काम या ब्यूटी पार्लर या घर से कुछ बना करके वो बेच रहे हैं सो उन्होंने टेक्निकली एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिया था बिफोर वी इवन एंटर्ड और वो एसएजी के साथ जुड़ी हुई है हम आते हैं सो वी डिजिटाइज हर वी बिल्ड हर कैपेसिटी एंड वी डाइवर्सिफाई हर इनकम अपॉर्चुनिटी
3: कैन यू वॉक ऑल ऑफ अस बिकॉज आई थिंक एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नंबर्स
0: सो आवर जीएमवी लास्ट ईयर वाज 226 करोड़ ईयर बिफोर दैट वाज अबाउट 100 करोड़ this year will be lagbhag around 450 crores. Our ratio in terms of the GMV is split based on FMCG, agriculture, digital banking services, and consumer durables. And like, let's mix that basket.
4: Just out of curiosity, is there a solution is the same for across all the states, or is it? Or you found that certain things work in one state, certain things don't work in another?
0: So I think, sir, consistency is the key to the devil's in the details, right? So SEG ka jo infrastructure hai, it's actually quite nationalized, right? So wo infrastructure, wo reach, national rural livelihood missions, wo sub is the same in every state. Obviously, language is different, but language is an easy insertion. The role of a entrepreneur is exactly the same. These women are eager to earn income. What we also know is they don't want to leave their village. वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो 10 गाँव को संभालना नहीं चाहते हैं वो literally उनके पास honestly मैं बता दूँ 5 से 6 घंटे का time है सुबह बहुत सारे काम हैं शाम को बहुत सारे काम हैं तो वो 5 घंटे में वो क्या कर सकती है जहाँ वो कमाई कर सकती है नाम भी बना सकती है एंड सुविधाएँ भी लेके आ सकती है तो वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एक्चुअली अगर आप tier 4, tier 5, tier 6 के गाँव में देखो इट्स एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम सब किसान फैमिली हैं राइट 80% इज किसान फैमिली तो वो स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दिस इज बिकम अ वेरी ईजी मॉडल सो हम लोग गुजरात में हैं आंध्रा में हैं यूपी में हैं राजस्थान में वी आर अबाउट टू एंटर बिहार झारखंड एंड महाराष्ट्र बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग इन्वाइटेड
5: यू रेजिंग द मनी राइट नाउ टुवर्ड्स ओपेक्स
0: इट्स मोर फॉर टेक इट्स अ टेक बिल्ड एंड इट्स एन एचआर बिल्ड we want to bring in more senior folks because there's a bunch of things that we need to bring in that will allow us to strengthen
5: yeah please let us know if we can be helpful in any way I think it's a noble cause you're pursuing and takes a lot of courage to do what you're doing
4: I think it would be great if we can connect separately our foundation team would love to engage with you
0: I would love that
4: we work in almost

0: 123 different
1: Correct.
0: Locations.
1: Yeah.
0: And most of our engagement is in rural. So we would love to see how we can help in terms of increasing your reach over there.
1: That would be amazing.
2: No, so Karan, I think time for a Wings Golden Ring here.
3: I was just thinking the same thing.
0: You guys think?
3: Yeah?
0: Yeah?
3: Okay.
4: Thank you.
0: Thank you so much.
4: I'm really looking forward to
0: your
4: role here. Like, thank you
0: really
4: so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody.
1: Guys,
4: thank you.
1: You're amazing.
4: Thank you.
2: Best of luck.
1: Thank you.
5: How are you feeling?
4: I'm feeling now calm because ab khatam ho gaya. But also quite excited ki ab shuruaat ho gayi.
5: तो हमारे वंदे भारतम परिवार की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए, ये देखिए।
6: अजीता मैम, मैं यही कहूंगी कि आज जिन महिलाएं जो गांव में घरों में बैठकर अपना सिर्फ पति पर डिपेंड थी, उन महिलाओं को घर से निकालकर उनके हस्बैंड के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा जो कर दिया है, इससे उनकी परिस्थितियाँ तो सुधरी हैं, उसके साथ साथ उनकी पहचान भी बनवाई है मैम ने।
7: ऑनलाइन के बारे में तो महिला तो बिल्कुल जानती नहीं थी, आज हमारी महिला बहुत जागरूक हैं। जिनके साथ दुकान का काम चल रहा है दुकान चला रही हैं, जिन साथ सिलाई का कार्य चला रही हैं, तो हर रोजगार से जुड़ी हैं ऑनलाइन कार्य के बारे में सीखकर। आज मैं जो मेरी जिंदगी है बहुत अच्छी है, मेरे पास गाड़ी है, प्लॉट है, मकान है, सब कुछ है।
8: मैडम का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि हमको उन्होंने ये जरिया दिया और आगे ऐसी और योजनाएं लाती रहें जिससे महिलाएं आगे और बढ़ती रहें।
5: अजयता, लाइफ में ना पैसे तो बहुत लोग कमा लेते हैं, आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स थोड़े कम। यू आर वन ऑफ देम हुज एक्चुअली डन बोथ, यू गॉट बोथ, सो वेल डन, सो सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन द फिनाले एपिसोड। आपको पता है कि जो टॉप 5 विनर्स होंगे वो फिनाले एपिसोड में आएंगे, एंड मे बी यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट मिस्टर गौतम अदानी। वेल डन।
4: थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
5: कोर्स प्लीज।
9: और आज वंदे भारतम के मंच पर दिखे कुछ यंग इनोवेटर्स।
10: हम सीवीड और एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से रीजनरेटिव पैकेजिंग मटेरियल डेवलप कर रहे हैं टू रिप्लेस कन्वेंशनल प्लास्टिक फिल्म्स एंड इको पेपर विद आवर प्रोप्राइटरी इको कोटिंग,
9: जिनके यूनिक इनोवेशंस ने मेंटोर्स को किया इम्प्रेस।
11: हमने देखा कि इंडियन स्किन केयर मार्केट इज बूमिंग, फिर भी इंडियन कंज्यूमर कहीं ना कहीं फॉरेन फॉर्मुलेशन या फॉरेन R&D को ज्यादा देखते थे बिकॉज दे ट्रस्टेड देम मोर, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू चेंज।
9: जहां यंग माइंड्स ने दिखाया अपना टैलेंट, वहीं कुछ जोड़ियों ने भी मिलकर दिखाया अपने इनोवेशन का कमाल।
12: We have developed our 3-in-1 made in India respiratory device which can measure lung function of a patient's oxygen saturation, temperature and pulse all in one single device.
9: और ट्राई नाइनो की जोड़ी ने साबित किया कि इनोवेशन की कोई एज लिमिट नहीं होती।
5: मुझे लगता है कि जो एक सपना था, जो सोचा था वंदे भारतम के बारे में गौतम अदानी जी ने, कि इस मंच पर वो सब आए जहाँ उम्र कहीं बैरियर ना हो, जहाँ तजुर्बा कोई बैरियर ना हो, तो ये आपको देखकर मुझे लगता है कि वो जो सोच है वो सार्थक होती है। वेलकम टू वंदे भारतम।
13: थैंक यू सर। थैंक यू।
5: आप लोग रेडी हैं अपनी पिच के साथ में?
13: बिल्कुल
5: जी। तो आपके चमकने का समय शुरू होता है। आप
13: नमस्ते मेंटर्स, अगर हम देखें तो आपकी गाड़ी के शीशे पे धूल होगी या टीवी के स्क्रीन पे धूल होगी या चश्मे पे धूल होगी, तो विजन और क्लैरिटी दोनों कम करती है। लेकिन अगर हम सोलर पैनल पे बात करें धूल मिट्टी की, तो उससे सोलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सनलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन का है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसमें वेस्ट हो जाता है। तो उन सबसे जुड़ी हुई इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम ट्राई नैनो टेक्नोलॉजी से, मैं हर्ष सेठी,
14: मैं डॉक्टर अंशु डांडिया, ग्रीन केमिस्ट स्पेशली एंड रिसर्च डायरेक्टर एंड को-फाउंडर ऑफ ट्राई नैनो टेक्नोलॉजी।
13: हमारी जो टेक्नोलॉजी है 3D क्वांटम क्लैडिंग इज नैनो कोटिंग। सोलर पैनल पे सबसे टॉप सरफेस ग्लास होता है, तो हम ग्लास पे वो करते हैं और एक नैनो स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सब एटॉमिक लेवल पे अमेजॉन रेन ट्री फॉरेस्ट को मिमिक करता है।
14: ये हमारी जो कोटिंग है वो अभी तक कोई दूसरी कोटिंग इसको क्लेम नहीं कर रही है, और हमारी ये सब ऑल प्रॉपर्टीज वेल एस्टेब्लिश्ड है इन द वेरियस लेबोरेटरीज। वी आर IIT incubated and MNRE supported.
13: हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कोई भी पैनल, कोई भी ब्रांड, कोई भी मेक, कोई भी टाइप, कोई भी एज, कोई भी लोकेशन एग्नोस्टिक है, सब पे लगाई जा सकती है. अगर नए पैनल है तो हम मैन्युफैक्चरिंग में काम करेंगे और लगे हुए पैनल है तो हम साइट पे जाके करेंगे. और बाकी हमारा आइडिया यही है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर सके. हमारी अपेक्षा अडानी ग्रुप से ये है कि हमने कुछ प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट किए हैं अडानी ग्रुप के साथ में, अडानी ग्रीन के साथ में किए, तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किए वर्टिकल्स में हम कुछ कर सकते हैं. सीमेंट बिजनेस में, ऑयल एंड गैस में, हीट एक्सचेंजर के ऊपर ट्यूब पे कोटिंग कर सकते हैं. तो आइडिया ये है कि अडानी ग्रुप के साथ मिलके हम बाहर एक्सपोर्ट मार्केट भी इसको एक कैप्चर कर सकें.
14: आपका सपोर्ट और इंस्पिरेशन हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत होगी.
1: डॉक्टर हर्ष एंड डॉक्टर अंशु, क्या एनर्जी आपकी, वेरी इन्फेक्शियस एनर्जी, सो अमेजिंग टू हियर.
13: थैंक यू मैम.
1: और आपका रेवेन्यू की जर्नी बताएंगे थोड़ा सा.
13: मैम 2022 में हमने चालू करी तो फर्स्ट ईयर तो 10,000 करीब ही था. फिर उसके बाद में करीब 1,00,000 रहा, 24-25 में करीब 1 करोड़, और लास्ट ईयर 25-26 में 3 करोड़ रेवेन्यू रहा.
1: वेरी नाइस.
0: दिस यू विल बी रिप्लेसिंग द ग्लास or this will be sprayed on top of the glass?
13: Sir, normally right now whatever glass we are purchasing whether from China or India, we are doing ARC coating, anti-reflective coating. और अभी नया मार्केट में ट्रेंड आया that is called high transmission double coating. पहले ARC की refractive index around 1.35-1.4 रहती थी, अभी high transmission में 1.22 करीब 2.4 है. हमारा idea है कि हम इनको replace करें.
0: I can only say since you've requested, we would be happy to as a group work with you. I think we can have a more intense engagement between our manufacturing plant, solar manufacturing, as well as Adani Green, and we can do a trial and see where it reaches.
13: Absolutely.
0: We start with solar, and once it is possible, we will then look at other industries as well, other businesses.
13: Absolutely, sir.
5: I think that's what you were looking. यही उम्मीद करके आए थे कुछ ऐसा हो जाएगा आज.
13: बिल्कुल.
5: करिश्मा,
13: उम्मीद यही थी कि आप लोग बैठेंगे तो सुनेंगे.
0: But I must say your energy is something and not giving up. I think in your life you've never given up and you keep coming back to it. It's just commendable.
13: Thank you sir.
14: Thank you sir.
13: My
14: performance
13: is just a number.
14: Yes, just a number. I have started this work in second inning of the life. Previously I was professor and head chemistry department from University of Rajasthan Jaipur. And I am the pioneer worker for green chemistry in India. Wow. So that was very challenging at that time. So challenge लेने की तो आदत पड़ी हुई थी बचपन से.
1: बहुत ही बढ़िया.
5: मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिनाले में पहुँचे. And I'm sure this is just a beginning, not second inning. This is just a beginning.
14: हमारे को ये मौका दिया आप सब ने यहाँ पे आने का, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है.
5: Thank you so much, sir. Wish you all the best.
13: Thank you, sir.
14: Thank you so much,
5: sir. Thank you. So, mentors, please, आप लोग scores दे दीजिए. So, mentors, अक्सर हमारी जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि जब माँ बाप होते हैं, they really hope कि उनके बच्चों के सपने पूरे हो जाए. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के सपना पूरा करना चाहते हैं. हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है. प्लीज वेलकम हैदराबाद तेलंगाना से आए हमारे अगले इनोवेटर टाइगर एस्टर और उनके को फाउंडर जितेन देसाई. हाय.
3: हाय.
5: वेलकम टू वंदे भारत.
3: थैंक यू सो मच.
15: थैंक यू सो मच.
5: मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी के पापा की ड्रीम थी. आप में से किसके पापा की ड्रीम थी?
3: Mine.
5: आपके. क्या ड्रीम थी आपके पापा की?
3: So my dad always looked at energy efficiency and the planet's safety as one of the prime things to work on.
5: So while you were growing up, you were always aware that this is what bothers your father?
3: Since I can remember, probably 11 years old onwards.
5: Wow. Super. So are you ready with your pitch?
3: Yes.
5: Your time to shine starts now.
3: Thank you.
16: Hi, good day mentors. My name is Jiten Desai or JD. We started this firm in 2022 to solve a very big decarbonization problem. ACs, while they cool inside, they are throwing very hot air outside and that has a multiplying effect and it just gets worse and worse. This technology is more than 120 years old and we are here to disrupt it with something that is made in India, that is climate appropriate, and can be scalable for the global south first and then the world. We started this because
12: heat waves are getting more intense, more long.

0: So she looks for solutions which can eliminate air conditioning. So she is the one who had told me that this is the one product that we need to look at. So that's how I know about this product.
1: I think the idea is great.
0: Great.
1: Mentos, course.
2: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
1: आज वंदे भारतम के कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं वंदे भारतम के ऐप पर, हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। नई सक्सेस स्टोरी से आपको मिलवाने का सिलसिला चलता रहेगा। वंदे भारतम के साथ फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
3: MyCorp is one of the pioneers of 3D concrete printing technology.
4: And now we are on a mission to democratize this technology.
0: Sports business, we are developing almost 20 million square feet of warehousing and work on your technology.
5: Oh my God!
1: What is happening here?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: what your day throws at you? Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: देश का टायर, जेके टायर।
2: खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियल मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
0: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani. Our pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: Dr. Roma, manual winding. चार लोगों के पास है ये.
3: कुछ इससे भी अनोखा.
2: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद. कमला पसंद पान मसाला.
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
6: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy, everyday.

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multi

0: कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके। आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है।
1: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and emerge even greater.
2: Meanwhile, a political fight has also erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul Gandhi has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying that 80% of India is non-vegetarian. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan took a sharper jibe, saying that mutton chicken gone missing. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has countered the Congress and the opposition. The minister has said that the foreign guests relished Indian vegetarian cuisine. The BJP says that the opposition has nothing to criticize, so it's left with counting dishes. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galoti to paneer, Himalayan guchi, South Indian purial and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
3: Jo yahan pe mans ke naam ke upar target karte hain, unke do do mukhyamantri mandir mein baithkar mans kha rahe hain. क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
4: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
5: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी, तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सब सुबह।
2: And well, earlier today on this whole BRICS menu issue that the Congress has come out with and why there was no non-veg on that platter, I earlier spoke with Chef Sanjeev Kapoor, who of course needs no introduction, the celebrity chef.

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है। फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं। मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके। आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है।
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and

0: and a shared Global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among Global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवीय के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and emerge even greater.
0: Meanwhile, a political fight has also erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul Gandhi has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying that 80% of India is non-vegetarian. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan took a sharper jibe, saying that mutton chicken gone missing. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has countered the Congress and the opposition. The minister has said that the foreign guests relished Indian vegetarian cuisine. The BJP says that the opposition has nothing to criticize, so it's left with counting dishes. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galotti to paneer, Himalayan guchi, South Indian puriyal and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
3: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो-दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते.
4: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं. जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है.

0: that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format and the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and emerge even greater.
0: Meanwhile, a political fight has also erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul Gandhi has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying that 80% of India is non-vegetarian. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan took a sharper jibe, saying that mutton chicken gone missing. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has countered the Congress and the opposition. The minister has said that the foreign guests relished Indian vegetarian cuisine. The BJP says that the opposition has nothing to criticize, so it's left with counting dishes. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galotti to paneer, Himalayan gucci, South Indian puriyal and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
3: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो-दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते.
4: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं. जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे.
5: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे. तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी, तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले।
0: And well, earlier today on this whole BRICS menu issue that the Congress has come out with and why there was no non-veg on that platter, I earlier spoke with Chef Sanjeev Kapoor, who of course needs no introduction, the celebrity chef, and this is what he had to say. You know, it's of course showcasing India's vegetarian platter from south to north to even Gujarat and other states on one rather plate. But talk to us more about, we're also learning that it is also perhaps good for easy digestion that the leaders were given vegetarian and light sort of vegetarian meal.
6: See, I think first and foremost, when a menu is being planned, of course, you keep everything in mind, and digestion, health, everything is kept in mind when chefs are designing the menu. And it's not, you have to understand there would be some degree of difficulty that would be brought in dishes. There would be some innovation that would be brought in. There would be authenticity. And also, remember, food plays a very important part in food diplomacy. In that, we have to keep everything in mind. It is not, when a menu is being planned, the last thing that goes into a chef's mind is that how would it break the world? Never. It is how we bring the world together. Okay. That's every chef, no matter which part of the world, whether vegetarian, non-vegetarian, I think that's how a chef's mind thinks.
0: In other news, Union Home Minister Amit Shah said that Seva Sankalp Abhiyan will begin on September 17th, and this is being done to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday and his 25 years in public life. Shah said that the campaign built around the slogan Jan Seva Hi Prabhu Seva will focus on public participation in the goal of making India a developed nation by 2047. The Home Minister also made a major announcement on the Uniform Civil Code, saying that he was confident that the UCC would be implemented in all 21 BJP NDA ruled states before 2029. He accused the Congress-led era of policy paralysis, coalition compulsions, corruption, casteism, and dynastic politics, saying that the country had since then been freed.
7: Dheer sare rajyon mein कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है, और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। 2014 से पहले हमारे देश की राजनीति का दिशा तीन नासूरों से पीड़ित था, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद। 2024 से 26 के इस राजनीतिक एरा में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद वो समाप्त होकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में देश की जनता आगे बढ़ी है। हम सभी एनडीए के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम ये एक माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। ये सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र में चलेगा। राष्ट्र हर प्रशासनिक इकाई, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चलेगा, हर जिले में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और बूथ तक सेवा संकल्प अभियान को लेकर हम देश की जनता तक पहुंचने वाले हैं।
0: Ajith Kumar and Vijay, two of Tamil cinema's biggest names and at the center of one of its longest running fan rivalries, shared the spotlight at Silverstone. But this time, it was not about cinema or box office numbers. Ajith hailed Vijay's visit

0: जी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं। मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके। आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है।
1: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and emerge even greater.
2: Meanwhile, a political fight has also erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS Gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul Gandhi has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying that 80% of India is non-vegetarian. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan took a sharper jibe, saying that mutton chicken gone missing. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has countered the Congress and the opposition. The minister has said that the foreign guests relished Indian vegetarian cuisine. The BJP says that the opposition has nothing to criticize, so it's left with counting dishes. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galoti to paneer, Himalayan guchi, South Indian puriyal and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
3: Jo yahan pe mans ke naam ke upar target karte hain, unke do do mukhyamantri mandir mein baithkar mans kha rahe hain. क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले लोग हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते।
4: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं। जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना, क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
5: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम डिनर में तो जो है एक सादी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी, तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सब सुबह।
2: And when earlier today on this whole BRICS menu issue that the Congress has come

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me assure you that our organization will continue to work with all international partners to make sure we see sustainable and stable economic growth. We expect this BRICS outreach summit meeting to be quite beneficial. BRICS today is one of the core driving powers towards strengthening true multilateral approach to international relations, to forming a more stable multipolar world order. Let me emphasize that BRICS countries see growth in populations year by year. They see their economies develop and emerge even greater.
0: Meanwhile, a political fight has also erupted over the all-vegetarian menu of the BRICS gala dinner. It has now become a political talking point. Congress MP Rahul Gandhi has questioned the absence of non-vegetarian dishes, saying that 80% of India is non-vegetarian. Meanwhile, AIMIM's Waris Pathan took a sharper jibe, saying that mutton chicken gone missing. Meanwhile, Union Minister Kiran Rijiju has countered the Congress and the opposition. The minister has said that the foreign guests relished Indian vegetarian cuisine. The BJP says that the opposition has nothing to criticize, so it's left with counting dishes. The dinner menu was an elaborate showcase of India's culinary diversity, from Khandvi millet and mushroom galoti to paneer, Himalayan guchi, South Indian puriyal and millet palau. What was meant to be a celebration of India's food and culture has now served up a fresh political fight. You can listen to all the reactions coming in on this.
3: जो यहाँ पे मांस के नाम के ऊपर टारगेट करते हैं, उनके दो-दो मुख्यमंत्री मंदिर में बैठकर मांस खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो रूप बदलने वाले रूप हैं. हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करते. हम ये काम नहीं करेंगे कि हम कहेंगे कि यहां तो मांस के नाम के ऊपर एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करेंगे, खुद जाकर के थालियों में परोस परोस कर मंदिर में भी बैठ के खा लेंगे, तो ये काम हम नहीं कर सकते.
4: एक वोट बैंक को टारगेट कर हर चीज में राजनीति करते हैं. जो विदेशी डेलीगेट्स आए हैं उनको किस प्रकार का भोजन सर्व किया जाएगा ये सरकार तय करती है, और उसमें भी राजनीति करना क्योंकि उनको लगता है कि एक वोट बैंक को ये करके खुश कर लेंगे।
5: डिनर डिप्लोमेसी ही नहीं है, डिनर को लेकर के डिनर पॉलिटिक्स भी करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स को भी उसमें सम्मिलित करेंगे, तो फिर बहुत सारी बातें उठेंगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम डिनर में तो जो है एक साझी वो जानी चाहिए थी, झलक जानी चाहिए थी, तो आप तो वहाँ भी भाजपा ही झलक दे रहे हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे तो सवाल उठेंगे कि छोले में नमक कम था या मसाला ज़्यादा था, या हैदराबादी बिरयानी में मुर्गा था या नहीं था, या मटन था या नहीं था, ये सवाल उठेंगे सबसे पहले।
0: And well, earlier today on this whole BRICS menu issue that the Congress has come out with and why there was no non-veg on that platter, I earlier spoke with Chef Sanjeev Kapoor, who of course needs no introduction, the celebrity chef, and this is what he had to say. You know, it's of course showcasing India's vegetarian platter from south to north to even Gujarat and other states.

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format and the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our basic values and ideals. Let me

0: And it's the final day of the BRICS summit in India as leaders come together with a strong message of cooperation and a shared global South agenda. Prime Minister Modi, in his closing remarks, said that inclusive growth remains the aim, with BRICS nations set to rise together for humanity. He also said that growing confidence in BRICS among global South nations would drive greater cooperation. Russian President Vladimir Putin, meanwhile, stressed that a multilateral approach can ensure stability. And as the summit draws to a close, Prime Minister Modi joined other leaders for the BRICS family photo. Standing at the center with Russian President Vladimir Putin and the Chinese President Xi Jinping alongside him.
1: यह ब्रिक्स की बढ़ती ताकत, आकर्षण और अभूतपूर्व विश्वास का प्रमाण है. फ्रेंड्स, भारत की अध्यक्षता में हमने सभी प्रयास, रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, सस्टेनेबिलिटी इन चार स्तंभों पर केंद्रित किए हैं. मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम अपने साझा विजन को विन विन सहयोग में बदल सके. आज विश्व में तनावों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सामान्य मानवी के जीवन पर उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी हो रहा है और व्यापक प्रभाव हो रहा है. महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिस्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता. इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है.
2: The extended format, the wide representation we see here today reaffirms that the respect for BRICS is growing. Many in the world are attracted by our